खेत दा मालक जदों राय पुलार दे कोल पहुंचिया आख्या राय जी इस बालक दी गाइयां मजियां ने मेरे सारे खलियान खराब कर दिते सारी खेती उजाड़ दिती। हुण मेरे गरीब दा हरजाना कौन भरेगा। राय जी ने पछाण लिया ए तां मेहता कालू पटवारी दा पुत्र है। आख्या नानक तूवे क्यों कीता। आख्या मैं तां उस प्रभु दे रंग विच बैठा सां मैनू नहीं पता। मैं ता कालू नू सदिया। मैं ता जी जदों आए राय ने आख्या वेख वही तेरे पुत्र नानक ने गाइयां मजियां आ दूजे दे खेत विच छड़ के सारा खलियान खेत खराब कर दिता। इदा हरजाना पर भई तेरा पुत्र है ना नानक। मैं ता कालू कहन लगा ए ता है ही निखट्टू।

आख्या इत्थे बैठ के हुण दुकान करेगा ता इसदा चित दुकान विच लग जाए। साहब जी दुकान ते बैठ गए, किरियाने दी दुकान है, जो कोई लोड़वंद आउंदा है चोली अगे करदे गुरु नानक ओदी चोली भर देंदे। एक दो तीन चार पांच

13 तक गुरु नानक ने गिणिया ते जदों 13 आख्या ते फिर जेड़ा आउंदा गया ओदी चोली भरी गई ते कहंदे गए 13 13 13 सत संगत बोलो श्री 13 ही 13 करके चोलियां भर रहे बाला लिया लिया के

तेरा मोदी खाना गुरु नानक लुटा रहा है, जाके उदे कोलो हिसाब किताब ले, नहीं तो लखा दा घाटा तेनू हो जावेगा। कोई लोड़वंद गरीब गुरबा गुरु नानक कोल आ जांदा है, चोली विछांदा है, गुरु नानक तेरा ही करके विच पा देंदा है, ते कोई पैसे नहीं लेंदा किसे कोल। जाके गुरु नानक कोलो हिसाब ले, दौलत खान जदों आया कहन लगा गुरु नानक मैं तेरे नाल हिसाब करने, कितने दिन हो गए तेनू काम कर दिया, पहले हिसाब ला लईए के की नफा होया की नुकसान होया, ते अगे फिर काम चलावांगे। साहब जी कहन लगे बेशक हिसाब कर लो भाई, कर लो हिसाब। ते जदों सारा हिसाब होया, इतिहास विच लिखे है के दौलत खान जदों सारा माल अंदरों गिणिया तोलिया ते की हिसाब विच लिख लिया, हिसाब कीता ते 735 रुपये गुरु नानक दे वद निकल गए। दौलत खान बड़ा हैरान होया, कहन लगा मैं सुनिया के तू सारिया नू रब दे नां ते देई जांदा ते फिर तेरे कोल ए पैसा नफे विच कित्थों निकल आया। गुरु नानक सच्चे पातशाह कहन लगे दौलत खान जो रब दे रस्ते

ताई साहब जी ने भी गंगा विचों एक लोटा लिया ते आख्या पंडित जी आ की कर रहे हो। पंडित कहिंदा जी मैं सूरज देवता नू जल दे रहे। साहब जी कहन लगे अच्छा आ पूर्व वाल करके पंडित जल दे रहे है सूरज नू ते गुरु नानक ने पश्चिम वाल मुंह कर लिया ते लोटे दे नाल जल पाना शुरू कर दिता। सत संगत बोलो श्री। पंडित कहन लगा सूरज इस पासे है।

परमेश्वर दा नाम होया तेरे कोल ता उना कर्मा कांडा दा वही मुल पैणे सात सगत बोलो श्री जिवें एके तो बिना उना सिफरां दी कोई मुल नहीं इसे तरह एक प्रभु दे नाम तो बिना जो कुछ मर्जी करदा रह कदे थाए नहीं पवेगा तेरा। गुरु अर्जन देव पातशाह बाणी विच कहंदे हन प्यारे इन बिद मिलन न जाई मैं किए कर्म अन

उस बच्ची ने सुनिया के इस जीवन दा कोई भरोसा नहीं है ता अगा होके जिथे गुरु नानक सच्चे पातशाह बैठे सन उस बच्ची ने जाके जदो गुरु नानक सच्चे पातशाह दे चरना ते सिर रखिया गुरु नानक दे चरना दी शो पा के उस बच्ची दे कपाट खुल गए ज्ञान हो गया कि मैं किस वास्ते संसार ते आई हूं और मेरा मनोरथ की है। ऐसा सच दा उपदेश गुरु नानक ने दिता उत्थे संगतां नूं के भाई एक परमेश्वर दे नाल जुड़ो एक प्रभु दा सिमरन करो उस सिमरन ने ही तुहानूं इस संसार सागर तो पार करना है।

महाराज के दरबार विच तऊ सरंदे ते रबाब वजा के इना रीतां दा कीर्तन सतगुरु दी हजूरी च हुंदा रहा है। ये पुरातन रीत श्री हरिमंदर साहब दी ये भेट है।

खंड खंड प्रचंड पार पूर्ण प्रेम की प्रीत सवारे पार न पाए सके पद्मपद

ये जो शब्द आप श्रवण कर रहे हो गुरु अर्जन देव पातशाह जी दा शुकराने दा शब्द है सुलही ते नारायण राख समे दा बादशाह जहांगीर जिसनू ए गल चंगी नहीं सी लगदी के गुरु नानक दे दर दी दिनो दिन वड्याई वधदी जावे गुरु नानक दे दर ते जिथे गुरु के सिख आके जुड़दे सन हिंदू भी और मुसलमान भी रूहानियत प्राप्त करन लई हजूर दे चरणा विच आ जुड़दे सन इस दे मन विच बड़ा दुख सी के गुरु नानक दे दर दी दिनो दिन वड्याई वधदी जा रही है अपने सीपा सलार नूं हुकम दिता भई तू कश्मीर नूं जा रहा जंग करन लई ते रस्ते विच गोंदवाल नाम करके पिंड है जिथे गुरु अर्जन देव रहिंदा है उस नूं भी शुद्ध दा जाई उचारण करो श्री वाहिगुरु ते जदों ए पता गुरु अर्जन देव पातशाह जी नूं लग्या ता सिखा ने बेनती कीती जो इस शब्द विच अंकित है प्रथमे मता जे पत्री चलावो द्वितीये मता दोए मानक पहुंचावो तृतीये मता किश करो उपाया मैं सब किश छोड़ प्रभ तू ही ध्याया हजूर अगे बेनती कीती गई

0: रहे जल बिन कुंभ न हो। ज्ञान का बतावन रहे गुरु बिन ज्ञान न हो। ओ गुरु बिन ज्ञान न हो।
1: बाबा जी ताड़ी इस छबील दे आसरे साडा पेंडा कटिया जांदा है।
2: आसरा उस दा आधार दा मैं देख सेवादार हाँ।
1: खुश रहो बाबा जी खुश रहो।
2: आप उतर ले पी। ओ ले पी।
3: जल पाया परमेश्वर पाया
2: अब मोहे जलत राम जल पाया। राम अधिक तन जलत बुझाया मन मारण कारण बन जाइए सो जल बिन भगवंत न पाइए।
4: सो जल बिन भगवंत न पाइए।
2: हाँ बेटी।
4: बाबा जी असि भी मन में जल लग रहे हैं थोड़ी कोल तो हजारे यात्री आते जाते शायद तुम्हें कुछ पता हुए।
2: कादा पता
4: ए मेरे पति ने इन्होंने सुपने विच एक थां वेखी सी पानी दी एक छपड़ी आदि कंडे ते बेरी दा दरख्त ते बेरी ते कहां बैठते ने
2: छपड़िया ते कई ने ते बेरी दे दरख्त भी बेअंत हैं।
4: नहीं बाबा जी आज बेरी ते इको ही होगी जिस तो कहां उड़ के छपड़ी डुबकी लाने ने ते चिट्टे हो उड़ जाते ने।
2: चिट्टे हो उड़ते जाते ने।
3: हां बाबा जी ते नाल ही आवाज आ रही सी
4: कागू हंस करे।
2: कागू हंस करे कागू हंस कर ये तो गुरु नानक देव जी की बाणी है। तुसी इंज करो सिर्फ गोंदवाल चले जाओ उत्थे गुरु अमरदास जी का दरबार है गुरु नानक की अलाई बाणी का सोमा।
4: गुरु अमरदास।
2: हां बेटी उन्होंने हर चीज का ज्ञान है उन्होंने दर्शन करदे ही तुहाडे पैर अपने आप तुहानू उस मंजिल वल ले जाएंगे जिस मंजिल ही तुहाडे दिलां च तांगे।
4: किन्नी दूर है गोइंदवाल।
2: इथों थोड़ी दूर दरिया का पत्थर है उत्थे बेड़ी पैंदी है बस दरिया पार दे गोइंदवाल।
4: अच्छा बाबा जी असि चलने
2: परमेश्वर भली करेगा। कबीर सेवा को दोए भले एक संत एक राम राम जो दाता मुक्त को संत जपावे नाम।
0: उठ परी दायूज सार सुबह नवाज गुजार जो सिर साई नानी ले सो सिर कपल उतार जो सिर साई नानी में सो सिर की देताए उन्नी पैठ जलाए बालन संदे थाए बालन संदे थाए।
5: और साहब जी की गल है पहला तुसी नहीं गया रिता
4: असी किस तरह जानते सोचते हम पहले पूछ लिया होंदा
5: की पूछना सी
4: सारे मुसाफिरों ने तुहाडी सेवा च कुछ ना कुछ भेंट किया है पर असी साडे कोल ना दिल चोल ना धर्म ना दमड़ा।
5: और चलिए पहले मैं कोई कम कमाइया नहीं तो नहीं करता मैं तो गुरु के दर्शन आई हूं संगतां की सेवा करके अपना जन्म सफल कर रहा
4: फिर भी तुहाडियां लोड़ां
5: मेरिया लोड़ा तो खुदावंद पूरियां करता है तो होर मैं चाहिए कि की जो कुछ मैं लोग दे जाते जाके गुरु के दरबार चढ़ा देना दिन वेले बेड़ी चढ़ाना तो राती लंगर चो ढेड़ भर के बाहर थड़े दसो जाना मैं उगन हारा कोगन पले नाही
4: तन
5: ते मैं नहीं पैना तन तो गुरु महाराज है जरा सब न अपनी मिठी बाणी का अमृत पिलाता है और दर से जाओगे तो उन्हू कहना जिन्हें सानू यह सागर पार कराया उस औगन हारे इस पाव सागर तो पार उतारो।

तू क्यों व्यर्थ है? इसने प्रथाए नौवे पास दिन विकथन कीता, हर की गत नाही को जाने, जोगी जति तपी पछहारी अर बहलोक सियाने। तू बेअंत को विरला जाने, को विरला जाने, गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द, गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द, रंग हाए मुख्तलिफ दारिद बुते अजारे मा। तू बेअंत अपनी माया आप सारी आपे देखन हारा, नाना रूप तरे बहु रंगी सब तेरे निया। तू बेअंत ब्रह्मा न जाने अंत न पावत देव सबे, मुन इंद्र महा शिव जो करी। तू बेअंत अत ऊंचा ताका दरबारा,

एतल होती खाक मेमारी गोर करे एतन होती खाक निमाणी गोर करे आज मिला शेख फरीदा तत्म कुंजड़िया आज मिला शेख फरीदा तत्म कुंजड़िया मनो मचंदड़िया जे जाना मर जाइए कुम ना आइए झूठी दुनिया।

गगा गोविंद कुंद्रवो सास सास जपनीत कांब सासा देता बिलमना करियो मीत मैं बारक न जोबने मैं बिर

चलने चलना हार बिचारा ले मनो चलने चलना हार बिचारा ले मनो गंढे दिया छे मार तोड़े दिया चिखिनो जिमें पुछे आसमान फरीदा केवट किन गए

कहे नानक चेतरे मन जीड़िया परदेसिया जीड़िया परदेसिया जिस वक्र को लैन तो आया राम नाम संतन कर पाया तज अभमान लिया मनमोहन राम नाम हृदय में तो लाद खेप।

नाश करे जीवन पर कारण लोचन कछु न सूझे कह कबीर सूरे प्राणी कह कबीर सुनो रे प्राणी।

जीवतला ब्यार है जको तो जानो, जीवतला ब्यार है जको तो जानो, नानक हर गुण गाए ले सब सुख समान।

रंग तुरंग करीब मस्त रंग तुरंग करीब मस्त सब लोग सिदासी कावे से खुसाए खां सबे उठ जासी।

समझ आई साहबा दे चरणी पै गए। कहन लगे महाराज ए ज्ञान किवें आवे, हिरदे विच ए सोझी किवें बैठ जावे। सन गुरु नानक कहन लगे अमल नाल गुरु दे उपदेश नाल। कहन लगे फिर गुरु किनू धारीए, साहबा ने गुरु दे तीन

मैं अपने मन की अवस्था उन्हां कोल आखां जिहड़े तुरे होए ने पहुंचे होए ने इस मार्ग ते जिन्हां ने चार कदम तय कीते होए मंजिलां मारदे तुरे जा रहे ने जिहड़े ओह जिहड़े मंजिलां मारदे जा रहे ने साहिब कहिंदे ने अखाउंदे ही नहीं केवल ओह की करदे ने उद्यम करे भलके प्रभाती अमृत वेले प्रभात का मतलब है सूरज चढ़न तो बहुत पहला डान ते मारन विच फर्क है जिसने सूरज चढ़दा है उसनू डान कह देते हैं लेकिन सवेरा इस तो पहला है सवेरा का मतलब होंदा है चंगा वेला सवेला सूरज चढ़न तो बाद जिहड़ा बंदा भगती की गल सोचता है ना वह कवेला कर बैंदा है सवेरा जिन्हां ने सामना है वह अमृत वेले सूरज चढ़न तो बहुत पहला पहला अपना कम नबेड़ दे जेड़े इस मार्ग से तुरे हुए ना भाई साहब तो बड़ी खूबसूरत गल कही भाई साहब कहंदे ने ऐसे लोग जेड़े गुरु मार्ग से अमृत वेले तुरदे ने मेरा तो जी करदा है उन्हां दे चरणां दी खाक हो जा नख सिख लो नख पैरां दा नहु नख सिख सिर दी चोटी नख सिख लो सगल अंग रोम रोम कर काट काट सिखन के चरण पैवाई कट कट के मेरा शरीर सिखां दे चरणां तो निछावर कर दे वारने कर दे कहते ने अग्न जलाए फुल पीसन पिसाए तेह चक्की च पी दे अग च भुन दे लै उड़े पौन होए अनेक प्रकारिये तरह तरह नाल हवा विच उड़ा दे उस हवा विच मेरे शरीर की खाक उड़ जावे ते फिर कहिंदे ने जत कत सिख पग धरे गुरपंथ प्रात सवेरे सवेरे जिहड़े जिहड़े रस्तियां तो गुरु के सिख गुरु चरणां वल तुर के आउंदे ने जिहड़े जिहड़े रस्तियां तो गुरु के सिखां दे चरण गुरु के सिखां दे पैर गुरु चरणां वल गुरु द्वारे वल वधदे ने ताहू ताहू मार्ग मैं पसम को डारीए मेरे शरीर की पसम जेड़ी ओना ओना रस्तियां ते फैला दे ओना ओना रस्तियां ते विछा दे मेरे शरीर नू सुहा करके पसम करके तेह पद पादक चरण लिव लागी रहे ओना रस्तियां ते पैदल चलन वालियां दे चरणां नाल मेरा प्यार बनिया रहे मेरी लिव लगी रहे दया के दयाल मोहे पतत उधारीए ताकि उन्हां दे चरणां दी खाक प्राप्त करके मेरे शरीर की खाक उन्हां दे चरणां दी छोह प्राप्त करके मैं पापी पार उतर जा मेरा पापी का उधार हो जाए कैसी प्यारी जीवन जाच है उत्तम करे पलके प्रभाती अमृत लेने उठे उत्तम करे आलसी ना रह जावे क्योंकि आलसी का निरा रोगी किसी पासे भी कामयाब नहीं हो सकता गुरसिख जीवन के हर मैदान च सफलता नु प्राप्त करने वास्ते उत्तम करना और महाराज पावन बाणी च सुचेत कराया उत्तम करेंदिया जीओ तू कमान दिया सुख पुंज ध्याय दिया तू प्रभु मिल नानक उतरी चिंत उद्यम करके जी उद्यम करके कमाई भी कर ते ध्यान करके भगती करके प्रभु दे नाल सांझ भी भर पा लै इधर भी मिलाप कर लै इस तरह तेरा जीवन एक चैन वाला सुख वाला निश्चिंती वाला हो जाए इशनान करे अमृत सर नावे शरीर करके भी शुद्ध हो ते जिथे बाणी दा अमृत वसदा हो उस सत्संगत के अमृत सरोवर में आके मन भी डुबिया लवा उपदेश गुरु हर हर जप जापे फिर गुरु का उपदेश सरवण करे उसके अनुसार ही होकर के वाहगुरु नाम सिमरन करे उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जन के सदकाम अमृत छकने ना पंजा प्यारे वो जिसने कहते ने गुरसिखा अज तो तेरा जन्म गुरु नानक दे घर विच होया कलगीधर पातशाह दे घर च होया तेरा पिता गुरु कलगीधर तेरी माता साहिब कौर तेरा जन्म केसगढ़ साहिब दा ते वासी तो आनंदपुर साहिब दा रही चल भावे जिथे तेरा दिल करदा किस नगर च रहो तेरी सांझ आनंदपुर वाले नाल बनी हो बल्कि तेरा हिरदा उस आनंद दे नगर दा वासी होवे जिस नूं किया गया बेगमपुरा शहर को नाम तू खांदो नहीं ते ठाओ तेरी मानसिक अवस्था आनंद वाली हो तू उस दे उस आनंद वाली नगरी का भी वासी होवे जिथे भगतां दा वासा हुंदा है संतां दा वासा हो उस आत्मक अवस्था की उच्चता नू तू प्राप्त हो उथे नाले नहीं कहंदे।

गुरमुख तेरे ते आज तो ए पाबंदी आयद होगी। ये गल समझ लेना, जेड़ा बंदा पाबंदियां अंदर नहीं जींदा वो आप उतरा। डिसिप्लिन नू ना धारण करना, घरां दा डिसिप्लिन है, स्कूलां कालजां दा डिसिप्लिन है, फौजां दा डिसिप्लिन है, बाजारां कारोबारां दा भी अपनी किस्म दा एक डिसिप्लिन है। उस डिसिप्लिन तो बाहर जाओ कानून आग्या नहीं देता। धर्म दे संबंध च ऐसा लोगों ने समझ लिया जो मर्जी करो, ऐसी गल नहीं चली। गुर सतगुर का जो सिख आखाए वो सिखी दे डिसिप्लिन च चले। गुरसिखी दे जो नेम ने, और वो नेम तुहानू पता है, सारियां नू पता है, पंज प्यारे हुक्म देणगे अज तो तू पंजां ककारां दा रह धारनी होना। इन्हां पंजां ककारां दी हद तो बाहर नहीं जाना, इस डिसिप्लिन तो बाहर नहीं जाना, और चार बजर कुरैतां दी उस लकीर तो भी बाहर नहीं जाना। चार बजर कुरैता तो बच के रहना है, पंजे रहता नू पूरी तरह धारण करना, ना केवल बल्कि ईमानदारी नाल धर्म की किरत करके कमाना है, गुरु दसवंद देना है, परोपकार हित जूझते रहना है, अपने अंदरों उठते विकारा नाल जूझते रहना है। वो जिहड़ी तुक आपां पढ़ने रहत नाम है, खालसा सोए जो चढ़े तुरंग, खालसा सोए करे नित जंग। बंदा सोचता है भी ओहदा समा सी जिसले घोड़ियां ते चढ़ के गुरु ते सिख जंग करदे सन, ते महाराज दे लिखाए हुए रहतनामे तां त्रैकाल ने। हुण जे घोड़े नहीं ते जंग नहीं ते फिर दा मतलब है सिख की करे, जे नहीं करदा घोड़े ते नहीं चढ़दा, जंग नहीं करदा ते फिर सिख तां बेकार हो गया, सिख सिख ना रहा, ऐसी गल नहीं है। ओ जंग बाहर ली है, बुराई नाल जंग है, लेकिन बुराई तां अंदर भी चलदी पई। जिसले बंदा इधरों बाहरों वेला होवे, साहिब कलगीधर पातशाह कोल सिखा ने सवाल किया, महाराज हुण तां कोई लड़ाई झगड़ा जंग कोई नहीं रह गया, की करिए अजकल की करिया करिए। साहब कह लगे युद्ध जारी रखो। हैरान हो गए, कह लगे महाराज हुण आपस च लड़ीए, युद्ध किहदे नाल जारी रखिए, लड़न वाला दुश्मन ही कोई नहीं, सारे भगौड़े हो गए, छड गए, भज गए, हुण किहदे नाल लड़ीए, युद्ध जारी रखिए, कैसा युद्ध। वैसे महाराज ने यह भी रोजाना के नितनेम शामिल किया, रेजाबाजियां करो, तलवारबाजियां करो, शरीर की कसरत भी करो, शस्त्र धारनी होके शस्त्र भी विद्या प्रवीण होने का जतन भी जारी रखो। लेकिन इतने जिसने महाराज ने कहा युद्ध जारी रखो, महाराज कहते ना लड़िए। धन जियो तेह को जग मैं मुख ते यार चित मैं युद्ध विचारे। बारला युद्ध भी चित का युद्ध भी, वो केड़ा युद्ध है। महाराज कह लगे अंदर तुहाडे ते थोड़ियां धारा पैंदियां ने, कदे काम हमला करता है, कदे क्रोध, कदे लोभ मोह हंकार, इन्हां नाल अंदरों ज्ञान की बढ़नी मनो हाथ ले कातरता कुतवार बुहारे। ज्ञान दा शस्त्र लैके अंदर दी बुराई नूं वढ़दे चले जाओ, अंदर दी भी सफाई जारी रखो, युद्ध अंदर भी चल सकदा। खालसा सोए जो चढ़े तुरंग, जो मन दे घोड़े ते सवारी करे, मन नूं काबू च रखे, डिसिप्लिन च रखे, सिक्खी दे डिसिप्लिन च रखे, मन नूं शरीर दा डिसिप्लिन है कि रहतां दा धारनी होवे, ग्रहतां तों बचिया होवे। मन का डिसिप्लिन यह है कि काम क्रोध लोभ मोह हंकार दे काबू ना, इस घोड़े नू लगाम पा के बाणी अनुसार खालसा सोए करे नित जंग बुराइयां नाल। अंदर भी बुराइयां नाल जंग करे, बाहर भी जंग करे। साहब कहंदे ने ऐसा गुरु का सिख उपदेश गुरु हर हर जब जब जापे, सब किल विख पाप दोख लह जावे। जिसने गुरु के बचना अनुसार एक डिसिप्लिन जीवन बतीत करेगा ना, पाप धोते जाणगे, दोष खत्म हो जाणगे, दोख कहंदे ने दोष नूं, दोष खत्म हो जाणगे, जीवन चो बुराइयां निकल जाणगे। जो सास गिरास ते आए मेरा हर हर, स्वास अंदर आवे स्वास बाहर जावे, एदे नाल वाहगुरु सिमरन जुड़िया हो। आम तौर ते ऐसा ही करदे ने, स्वास अंदर जावे ते वाह कहंदे, स्वास बाहर जावे ते गुरु कहंदे। सहज अवस्था विच इस तरह जपदे फिरदे चले जांदे ने, कई कदम कदम जपदे ने, कई कारोबार करदियां होया कोई भी हरकत कोई ताल मिल जावे उस दे नाल वाहगुरु सिमरन दा यतन करदे ने। लेकिन कई बार ऐसा भी हुंदा है सहज अवस्था विच सिमरन करदियां करदियां मन दी स्थिरता प्राप्त नहीं हुंदी, मन टिकदा नहीं, ओहदे वास्ते कई बार मन नाल जूझना भी पैंदा। ओहदे विच ऐसा भी कीता गया, गुरमुख गुरसिख जोर ला के भी सिमरन करदे ने, साह दी चाल तेज कर देंदे, काली काली साह लैंदे ने ते अंदर साह जांदे आ वाहे बाहर साह जांदे आ गुरु कह के, ओह अपने आप नूं तान लैंदे ने, बिलकुल तन के जिसले सिमरन करदे ने, उस सिमरन दा प्रभाव नाभी तों लै के सीस दी
ਚੋਟੀ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਰਨਾਟਾਂ ਛਿੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਨਾਮ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਹਿ ਸਦਕਾਮ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਲੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਜੋ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਧਿਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਆਲ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਦੇਵੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦੇਵੇ, ਦੁਰਮਤ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ, ਗੁਰਮਤ ਲੈ ਲਵੇ, ਡਿਸਿਪਲਨ ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਦਇਆ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪ ਵੀ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਪਾਉਂਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਧਨ ਧਨ ਹੈ ਜਿਨ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਹਰ ਕੰਨੀ, ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਨਾਮ ਦਿੜਾਇਆ ਤਿਨ ਹੋਮੇ ਕੁਬਦਾ ਪੰਨੀ, ਬਿਨ ਹਰ ਨਾਵੇ ਕੋ ਮਿੱਤਰ ਨਾਹੀ, ਵਿਚਾਰ ਡਿੱਠਾ ਹਰ ਜਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੋ ਹਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਰੱਜੇ ਨੇ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਭਿੱਜ ਗਿਆ, ਤਿਨ ਸਤਗੁਰ ਕੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਦੇ ਤਿਨ ਚੜੀ ਚਮਕਣ ਮੰਨੀ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਖੇੜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਹਦੇ। ਬਲਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਜੈ ਸਭ ਕੀਤਾ, ਧਨ ਧਨ ਸੋ ਗੁਰਸੇ ਕਹੀਏ ਜੋ ਸਤਗੁਰ ਚਰਨੀ ਜਾਏ ਪਿਆ, ਧਨ ਧਨ ਸੋ ਗੁਰਸੇ ਕਹੀਏ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮਾ ਮੁਖ ਰਾਮ ਕਹਿਆ, ਧਨ ਧਨ ਸੋ ਗੁਰਸੇ ਕਹੀਏ ਜਿਸ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਮਨ ਅਨੰਦ ਭਇਆ, ਧਨ ਧਨ ਸੋ ਗੁਰਸੇ ਕਹੀਏ ਜਿਨ ਸਤਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਹਰ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਇਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੋ ਹੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰੀ, ਜੋ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਚਲੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਰਜ਼ਾ ਚ ਚੱਲਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਹੁਕਮ ਚ

पले पले प्रेत कया मनिया सुख सहज इस कर का जानिया हो बंदे प्रखिलत बार अवनासी अग्नि अपार ले पक्का।

चुटी हो सकती है, अरे तोड़ा चुटी हो सकती, अरे तोड़ा सुच्चा है, अरे हाथ सुच्चा है, क्या बंदा?

0: गुरु रामदास, धन गुरु अमरदास, धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास। मैं ठीक हो गया, मेरा रोग तो पड़ गया, मैं चल फिर सकता। धन रजनी, एक तेरे सिदक का फल है जेड़ा अज मैनू नवा जीवन मिलिया। रजनी रजनी, मैं ठीक हो गया, मैं चल फिर सकता। रजनी, मेरा रोग तोता गया। रजनी, मैं ठीक हो गया।
1: कौन हो तुसी?
0: मैं कौन? तुसी मैं पछाणिया नहीं रजनी जी?
1: मैं कहनी, मेरे पति जिन्होंने मैं इतने छटके गई सी, कितने ने, कितने ने मेरे पति?
0: मैं ही थोड़ा पति है रजनी जी, थोड़ा पिंगला। तुसी मैं चिंतपुर नहीं लग गए, तुसी मैं संजी के दर्शन कराए, तुसी मैं गोंदवाल लग गए, तुसी मैं छबील वाले बाबा जी तो पानी पिया। मैं थोड़ा पति है, मैं थोड़ा पिंगला है रजनी जी, मैं थोड़ा पिंगला।
1: यह तो ठीक है, पर थोड़ा रोग किवें ठीक होया?
0: इस सारी करामात इस जल्दी है। थोड़े जाने तो बाद मेरे कन्ना फिर वही आवाज आई, कागो हंस करे। तो मैं रिड़दा रिड़दा ए छपड़ी के कंडे ते आ गया और टाणी नु फड़ के पानी च उतर गया। जब बाहर आया तो मेरे सारे जख्म तोते पए सन।
1: तुसी तुसी टैनिन भर के पानी कैसे ना?
0: हाँ।
1: केरे हाथ नाल?
0: ऐस नाल।
1: अच्छा, ता फिर तुसी ऐस हाथ में भी पानी पाओ, मैं अपनी अखा नाल इस जलदा चमत्कार देखांगी।
0: आओ मेरे नाल।

0: हे परमात्मा, तू मेरी पुकार सुन ले। माता दे दरबार विखे सपना साकार कर देता। तेरी लीला ब्रह्म पारे। तन गुरु अमरदास।
1: तन गुरु रामदास। रजनी
0: स्वामी,

मेरे मालिक मैं तेरे नाल जुड़ जा, तेरी गलवकड़ी विच आ जा, तेरे विच समा जावा, मन करके तन करके, अधूरा नहीं, केवल तन करके जुड़िया होवा, मन ना जुड़िया होवे ऐसा भी नहीं। ते जे मैं ऐसे बहाने करा कि मेरा ता मन जुड़िया है, तन की केड़ी लोड़ है, प्यार ता इस तरह कोई नहीं होता। जिन्हां ने प्यार किया है महाराज उन्हां दी गल करदे ने, गुरसिखां दी गल करदे ने, भगतां दी गल करदे ने, संतां दी गल करदे ने जिन्हां ने प्यार किया, ते प्यार किया ते फिर भरपूर किया। प्यार च अधूरेपन दी की गल, ते जद भरपूर प्यार करना है ते फिर तनो मनो प्यार करना है। तुसा वेखिया है सुहागना पति नाल मिठा बोलदियां ने, पति की प्रसन्नता वास्ते तरह तरह के शिंगार भी कर दिया, पति की प्रसन्नता वास्ते चंगे पकवान भी पकाउंदियां, ते पति थोड़ी देर पछड़ जावे घर आउण तो पौरियां होईयां फिरदियां रहिंदियां ने, मन विच भी प्यार है। शरीर करके भी पति की प्रसन्नता लैण वास्ते प्रयत्नशील है। ते जे कोई कहे मैं तां अंदरों प्यार करदा, बाहरले प्यार की केड़ी लोड़ है, घर बैठा रवे, गुरुद्वारे आउण दी थां नहीं, गुंजाइश नहीं, समा नहीं, अधूरा प्यार लैके बैठा होगा अबल तां होना ही कोई। एक ऐसा भी हो सकता है जिहड़ा गुरुद्वारे आके बैठ गया, मन इत्थे नहीं पिया जुड़दा, मन किते संतान ते रह गया है, मन किते मकान ते रह गया है।

परसेंट मैं उन्होंने नालों फाड़ दूंगा और कोई खास गल वो जिन्ना ने केस रखे हुए ने कंगे की बजाय वो अंगीठी ते पई कंघी वरते ने कंघा कोई नहीं केसा में रख किरपान कोई नहीं पाते कशहरे की बजाय कुटनिया जी पाई फिरते ने कच्चिया जिया जेड़िया बच्चिया पाई दया ने ओहिया वे पाई फिरते ने एक बड़ी गल होगी तो बहुत ने कड़ा पाया होगा बाकी तो किनिया रहता तो गैर हाजिर ने मैं उन्होंने एक बेनती की मैं क्या गुरमुखा एक गल का ध्यान रखी जितना चिर केस नहीं रखता सिखी शुरू नहीं होती एक रुख है ना उसके पांच हिस्से जड़ मुड टाण पत्ते ते फुल वही फुल जरा फलदार रूप धारण करता है ओही फुल जिसने कल फल बन के इसे रुख का मुड़के बी बन जाना पांच हिस्से ने रुख दे कह लगा जी हां हुण तू ये दस एक बंदे ने फुल झाड़ दिते दूजे ने पत्ते ते टाणियां छांग दित्तियां तीजे ने मुड़ कट दिता लेकिन तू देख रहा उन्हां जड़ां विचों एक नवा रुख कल नूं फिर फुट खलोवे कहिंदा जी ये तां है मैं कहते जे रुख उत्ते खड़ा रहे उत्ते सारा रुख खड़ा रहे थल्यो जड़ां कट देने फिर कहिंदा जी फिर तां कोई नहीं बचन लगा मैं क्या सिखी दियां जड़ां केस जद सरूप ही नहीं तो सिखी शुरू नहीं होती सिखी दे रुख दियां जड़ां केस ने और एक गल का ध्यान रखना वारने जाइए साहब कलगीधर पातशाह तो किड्डे विज्ञानक सन जिन्हां ने बंदे दे अधूरेपन नूं डक्का लाया कि नहीं तू अधूरा ना हो कुदरत ने तैनूं पूरा बनाया इस पूरेपन च अधूरापन पैदा ना कर आप जी नूं पता होवे केस मनुख दा ओ अंग ने जिन्हां दे बारे कहन नूं तू कह देवे कि की फंक्शन है इस दी की करदे की ने केस लेकिन अज वर्ल्ड हैल्थ इंस्टीट्यूट जिहड़ियां खोजां च लगी है उन्हां विच एक खोज है टैलीपैथी ध्यान देना दिमाग दियां लहरां सोचां दियां लहरां जो मैं सोचदा वह दूजे दे दिमाग तक ट्रांसमिट हुंदियां ने बल्कि सारे वातावरण च निकलदियां ने ट्यून होया या दूसरा मन उस नूं प्रवान करदा दिमाग दियां लहरां नूं जिहड़े लोग प्रवान करना जाणदे ने एकाग्रता नाल उन्हां नूं टैलीपैथ कहिंदे दिमागी तौर ते ही बिना कुछ बोलियां अपने दिमाग दियां लहरां नाल ही मरीजां दे दिमाग दे विच झटके दे के वह इलाज भी करदे घालना वाले लोगों की गल है पुराने समयां तो मनोविज्ञानक यह ढंग बच्चियां नूं पढ़ाउण दे काम भी आउंदा रहा चेलियां नूं सिखाउण दे काम भी आउंदा रहा लेकिन एक प्रश्न पैदा होया असीं सुंघदे आं नक नाल असीं सुणदे आं कन्नां नाल असीं वेखदे आं अखां नाल चखदे आं जीभां नाल ते असीं छोह के जिल्द नाल अपने शरीर की स्किन नाल छोह के ठंडे तत्ते का पता करदे लेकिन जिहड़ियां दिमाग दियां लहरां जिन्हों सिक्स सेंस कहने छेवीं हिस्स कहने एदा सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन ते सोर्स ऑफ सेप्शन की हो सकता है और तुसी हैरान होवो कि वह इस नतीजे ते पहुंचे ने कि टैलीपैथी का दिमाग दियां लहरां का प्रसारण करने वास्ते ते इस नूं प्रवान करने वास्ते इस नूं ट्रांसमिट करने वास्ते ते रिसीव करने वास्ते सवाए केसां दी होर कोई सोर्स नहीं और ये बंदियां नूं छड्डो बहुत जानवर भी तुहानूं ऐसे मिलणगे जिहड़े चैन विच होण ते बड़े आराम नाल उन्हां दे वाल उन्हां दी स्किन नाल उन्हां दी जिल्द नाल रले रहिंदे लेकिन जरा कोई प्यार करो वाल खड़े हो जाण जरा कोई खतरे वाली गल होई वाल खड़े हो जाणगे घर दियां कुत्ते ते बिल्लियां भी वेख लो एवें करदियां उन्हां दी पिट्ठ ते हत्थ फेरो वाल खड़े हो जाणगे उन्हां नूं दबकाओ कोई खतरा पैदा हो गया कुत्ता आ गया बिल्ली वास्ते ते बिल्ली दे वाल खड़े हो जाणगे कोई दूसरा कुत्ता बाहरों आ गया तो उस कुत्ते दे वाल खड़े हो जाने ये की है वाल कोई ढाल है ऐसी गल नहीं है वाल इन्नी सेंसिटिव रुचि रखते ने कि ये फौरन दूजे दे खतरे तो सुचेत कराते ने दूजे दे प्यार नूं प्रवान करते इन्हां दे सिरियां विचों निकलण वालियां दिमाग दियां सोचां दियां लहरां और असीं तां कई बारी बुजुर्गों को सुनते रहे हुण भी कई लोग मनते ने कहिंदे ने कि जिन्हूं याद करिए वह भी याद करता यार दिलों नूं दिलों के राह होंगे तो एक गल असीं यह भी सुनते हैं ना कहिंदे ने निछ मारीए तो कहिंदे ने किसी ने याद किया भौतिकवादी कहेगा कैसी बकवास है यह बिल्कुल ऐसी बकवास नहीं है यह बिल्कुल सच्चाई है।

अचानक बैठे बैठे कहने मैं तो फलाना बड़ा याद आंदा और दो मिनट बाद बूढ़ा खड़का दे ते कई दा हुणे तैनूं याद पै करदे सां एवें नहीं सा याद करदे पए ओ नेड़े आ रहा सी ओदे दिमाग दीआं लहरां साडे दिमाग नाल टकरा रहीआं सन ओदा ख्याल पैदा होया ओदीआं गल्लां शुरू हो गईआं ते जदों असीं सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन ते सोर्स ऑफ रिसेप्शन दा जड़ां तों कटना शुरू कर दित्ता दा रूप हुण ओह दिमागी लहरां बड़ियां कमजोर हुंदीआं जिन्ने ऋषि महारिषि होए ने पुराने समिआं दे ओह सारे कलगीधर पातशाह दे सिख तां नहीं सन पर जिन्हां ने भजन करना सी जिन्हां ने ध्यान करना सी जिन्हां ने समाधियां करनिया सन जिन्हां ने प्रभु नाल गल्लां करनिया सन टेलीपैथी नाल जिन्हां ने गुरु नाल गल्लां करनिया सन उन्हां ने केस रख के जटा जूट रह के त्यार पर त्यार रह के प्रभु नाल प्यार कीता है बाहरों भी कीता है अंदरों भी कीता ते साडे तां हुक्म लागू यार दी खुशी लैनी होवे प्यारे दी खुशी लैनी होवे तां फिर सरे तस्लीम खम है जो मिजाजे यार में आए जो प्यारे दे मन विच आउंदा है सिर झुका के परवान है नखरे किस गल ना नुक्कर ते बहाने ते दलीला किस गल दी मेरे प्यारे साहब कलगीधर पातशाह तेरे मन विच आई ते तू क्या मनुख दे केस बचे रहने चाहिए ने कतल नहीं होने चाहिए इस तरह का मनुख कतल हुंदा हुंदा हो जाएगा ते तू लाजमी करार दे दिता पहला ता केस रखा फिर अगलिया रहता की गल करांगे ते जेड़ा अगलिया रहता भी नहीं रखता ना वो एवं ही है कि जड़ा सांभ रखिया ने रुख नू टुरन नहीं दिंदा मुढ़ नू उठन नहीं दिंदा टाणिया फैलन नहीं दिंदा फुल लगन नहीं दिंदा जेड़िया बाकी रहता नहीं रखता जे सिखी दे रुख का फल चखना है कोई गुरु के प्यार का कोई फल कोई स्वाद कोई रस चखना है

भगत नु गुरु प्यार वाले नु बिना गुरु के दर्शन ते गुरु के दर्शन दे भी दो अर्थ ने, एक ता दीदार जिहड़ी अखां नाल करने आपां, एक दर्शन संस्कृत फलसफे नु कहिंदे ने। जो गुरु की फलासफी है जे उहनू नहीं समझिया ते दर्शन सदा अधूरे रह जाणगे। सतगुर नु सब को देखदा जेता जगत संसार, दिठे मुक्त ना होवे चिचर गुर शब्द ना करे प्यार। गुर शब्द ना करे विचार, जिन्ना चिर गुरु के शब्द दी विचार, गुरु के बचना दा अध्ययन, गुरु के बचना दी कमाई ना कीती, उन्ना चिर केवल आए मथा टेक के तुर गए ता प्यार बढ़ा दूंगा। इस तरह वेखिया गल नहीं बननी, अखां नाल गुरु के सोहने दर्शन दिदारे ते मन नाल गुरु के दर्शन भाव गुरु के फलासफी दी विचार, गुरमत दी विचार चले। मन तन करके इथे महाराज कहंदे ने नहीं रह सकदा, गुरु का सिख गुरु के दोहां दर्शना बिना, फलासफी बिना ते देखे बिना गुरु नूं कोई नहीं इहदा गुजारा हुंदा। दासां ने भावे बिन दर्शावे इक खिण धीरज क्यों करे, नाम बिहूणा तन मन हीना, जल बिन मछली ज्यों मरे। बंदा तड़फदा फिरदा रह जांदा, गुरु तो टुटिया, ईश्वर तो टुटिया होया, नाम तो टुटिया होया बंदा, मन करके तन करके बेचैनी विच रहिंदा। जिवे मच्छी पानी चो बाहर कढ के सुट देईए, उहनू कहीए तां केवल शरीर करके तड़फरीए, मन तां इहदा सुखी है, कोई नहीं मन सुखी रहिंदा। ओ जिहड़ी शरीर करके तड़फ रही है अंदरों भी दुखी, ते जिहड़ा बंदा अंदरों दुखी है ओह शरीर करके भी तकरीबन दुखी हुंदा है। तुसां देखिया बंदे नूं गुस्सा आ जावे, कहिंदा मेरा तां तन मन पिया सड़दा, कहिंदा और उंज भी चेहरा भी लाल सूहा हो जाएगा, हाथ पैर कंबन लग पैणगे। हुण गुस्सा तां मन नूं आया, तेरे शरीर नूं की हो गया। और एक दिन ऐसा भी आवेगा डाक्टर कहणगे गुस्सा ना करिया कर, तेरा खाणा तैनूं कोई नहीं भ्यास हुंदा, तेरा मैदा काम नहीं करदा, क्यों मैदा तां शरीर है, मैदा तां शरीर दा केंद्र है। गुस्से दा दिमाग च गुस्से दा मैदे नाल की तलक है, बहुत वड्डा तलक। क्रोध करन वाला चिंता करन वाला अज नहीं ते कल नूं बहुत वड्डा बीमार हो जाएगा। शरीर ते मन दा बड़ा संबंध है, प्यार मन ते तन दोहां तरीकियां दे नाल पुगदा है, एक तरीके नाल कोई नहीं पुगदा। महाराज कहिंदे ने जिहड़े टुट गए ने प्यार तों, उहनां दा मन ते तन दोवें कमजोर बेचैन दुखी रहिंदे ने। नाम बिहूना तन मन हीना, जल बिन मछली ज्यों मरे। ते कहिंदे ने मैनूं इहो जी मौत, इहो जिहा तड़फणा, इहो जी

हम गुरु नानक के शरीर के दर्शन करते हैं, उनके चरणों की छो प्राप्त होती है, कितने बड़े भाग होते हमारे। लेकिन गुरु नानक शरीर में नहीं है तो कुछ आनंद कम आता है। गुरु अर्जन देव जी इस भेद को खोलते हैं, भाई गुरु नानक की वाणी तुम प्यार से पढ़ोगे, श्रद्धा से वाणी के दर्शन करोगे तो उसमें से ही गुरु नानक के दीदार, ऐसा लगेगा जैसे प्रत्यक्ष गुरु नानक के वचन सुन के आए।

जागता है, गुरु सूरज के माफिक है, ये बात अलग है। हम लोग खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेते हैं। ऐ सूरज तुम्हारी रोशनी नहीं चाहिए, फिर कहें सूरज हमारे घर में नहीं आया, भाई भूल तेरी। सूरज तो हाथ दे रहा है, दस्तक दे रहा है, तेरे दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन तुमने दरवाजे बंद कर रखे हैं। गुरु नानक तो तेरे दरवाजे के बाहर खड़ा है, पर तुमने अपने दिल के दरवाजे बंद कर दरवाजे खोल।

सिफत सलाह करने वाला, कीर्ति करने वाला, उसनु गुरु महाराज ने ढाडी का नाम दिता है। इतिहास विच पुराने ग्रंथां विच जिक्र आउंदा है कि भगवान की उस्तत करने वाला जो हर वेले अपने हत्थां दे विच वीणा लेके रखदा सी, जिसका नाम नारद करके आया है, हर वेले प्रभु की उस्तत करदा सी, कीर्तन करदा सी परमात्मा। एक वेर नारद भगवान ने प्रभु कोल एक सवाल कीता, है भगवान जे तेरे दर्शन करने हो ता दस किथे तेरे दर्शन हो सकते हैं, क्योंकि तेरे दर्शन बड़े दुर्लभ हैं। प्रभु का मिलाप पावे कोई आखे के हथा दियां हथेलियां दे विचकार दर्शन करा दिया, कोई आखे त्रिकुटी चढ़ा के तेन दर्शन करा दिया, कितने ही कर्मकांड करके कोई आखे के दर्शन हो जान, ये नामुमकिन है, ये पखंड है, कर्मकांड है, इंज दर्शन नहीं होंगे उसके। ओदे दर्शन भगवान नारद कहते हैं कि ऐ परमात्मा तेरे दर्शन करने होने तक किथे दर्शन करा, तो कहते हैं कि भगवान ने उस वेले कहा, ऐ भगत जे मेरे दर्शन करने हो ना मैं किसे दक्षिण विच वसदा हाँ, ना किधरे पश्चिम विच वसदा हाँ, अते ना ही किसे खास स्थान ते मेरा वासा है, ना मैं मंदिर विच हाँ, ना किसे मस्जिद विच, ना किसे गुरुद्वारे विच, ना किसे गिरजे विच, जेड़ा मैनू इन्हां थावां ते लोड़दा है वो भरम विच है, जे मैनू लभना होवे तां मैं जिथे संगत प्रभु दे भगत जन बैठ के कीर्तन करदे होवन, उन्हां दियां जिथे जुतियां पईयां होवन, उन्हां दी जुतियां दी थां दे उत्ते उन्हां दी चरण धूड़ दे विच मेरा स्थान है। भगवान अपने भगतां दे वस है, उन्हां दी संगत भगत जिहड़े हन भावें जिथे मर्जी उसनूं प्रगट कर लैण। भगत ने चाहिया तां पत्थर दे विच

तेरा कोई अस्थान नहीं। जेड़े उस्तत करदे हन सिफत सलाह करदे हन इक मन होके जपदे हन कीर्ति दे विच जुड़े होए हन निष्कपट होके निर्छल होके निस्वार्थ होके जेड़े कीर्ति करदे हन प्रभु दी उन्हां नूं मैं प्रतक्ष अंतस्करण रूप विच अंतर आत्मे दर्शन दिंदा हां उत्थे मेरे दर्शन हुंदे हन। और भगत नारद इतना प्रभु दा निकटवर्ती सी प्रभु दी प्रसन्नता सी उस भगत नारद उत्ते क्योंकि वह कीर्ति करन वाला सी। तो गुरु महाराज ने गुरबाणी दे विच कीर्ति करन वाले नूं कीर्तन करन वाले नूं सिफत सलाह करन वाले नूं ढाडी दा नाम दिता है।

की परियोजना लेके आया है। अगू गुरु पातशाह जी ने एक सवाल किया, एक मंग की थी।

अलग अलग हन पर जोत ओहा जुगत साई सह आया फेर पलटे। पर एक गल किसे किसे ने समझी, किसे ने आख्या ए गुरु होर ओ गुरु होर, इस दी मर्यादा कुछ होर, उस गुरु दी मर्यादा कुछ होर। भाई गुरदास साहब जी कहना कहते ने इस भुलेखे विच ना रहियो, जे इस गलत फहमी विच रहा कि जो घर विच सुख साधन होण वह भी मुक जाणगे। गुरु कलगीधर पातशाह कहते ने जिन जाना तिन ही सिद्ध पाई, बिन समझे सिद्ध हाथ न आए। रिधियां सिद्धियां उन्हां दे घरां विचों जांदियां रहियां, जिन्हां ने आख्या ए गुरु कुछ होर ओ गुरु कोई होर।

मन गुरु चरणा दे नाल जोड़ के वाहे गुरु शब्द दा उचारण करदा है, उसनु एडा वड्डा फल प्राप्त है के जैसे अठ सठ तीर्थ परस किए, अठ आठ तीर्थां दे इशनान दा फल एथे ही बस नहीं। जैसे अठ सठ तीर्थ परस किए, जुग चार चढ़े हो कैलाश रहे हो, कोई चार युग कैलाश पर्वत ते बह के तप कर लवे, और इस दा महात्म एथे ही बस नहीं, अगलियां तुकां विच

बेर कुरुक्षेत्र में अश्वमेध जग अभंग थयो, उन अमृत नाम विशेष इति जिन एक बार श्री वाहेगुरु कहो। आख्या वाहेगुरु जपन दा इड़ा वड़ा महात्म क्यों है, ता भाई साहब अगली पौड़ी विच बयान करदे हन भाई वाहेगुरु।

तह रावण घर खबर न पाई, क्या जाना क्यों मरेंगे, कैसा मरना होए, मत कोई जानो अवर कछ सब।

एक जंगल समान है, जिस दे दूर दूर ता बड़ी भयानक अग लगी हुई है। जो अग्नि वड़े वड़े रुखां नूं पले होए रुखां नूं सारदी तुरी जांदी है। ते जे पिछे वेखिए ता कोमल बूटे होर हरे होंदे आउंदे हैं। अकाल पुरख वाहिगुरु दी रचना सब में जोत जोत है सोए, एक पासे संसार नूं समाप्त कर रहा है, एक पासे संसार नूं जन्म दे रहा है। उस दी जोत सदा परिपूर्ण है, जिस तरह अनेकां घड़ियां दे विच जल हुंदा है ते सब घड़ियां विचों आकाश मंडल नजर आ रहा है। घड़े जल दे भरे हुंदे हन ते उस जल विचों आकाश मंडल नजर आ रहा हुंदा। ते जे कोई घड़ा टुट जावे ता आकाश नहीं मरदा, केवल ए शरीर दा ठीकरा ही टुटदा है। इसे तरह ही संसार ते जो जीव आउंदा है, साहब कहंदे हन कौन कहंदा है कि फलाना मर गया है, नहीं कौन मुआ रे कौन मुआ, ओ ता पवने में पवन समाया, पंज तत्तां दा इंसान बनाया है। ओ पंजे तत्त जदों वक हो जांदे हन इंसान दी मृत्यु हो जांदी है। साहब कहंदे हन पवने में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया, माटी माटी होई एक रोमन हारे की, कमन टेक कौन हुआ रे कौन हुआ। ए अकाल पुरख वाहिगुरु दी रचना है, ए जग ए सारा संसार उस ईश्वर दी कोठरी है, रचना है। साहब बाणी विच इस प्रकार दस रहे हैं।

अब निकलना नूर उपाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंदे लोगा परम ना भूलो भाई खालक खलक।